जश्न कटिनाते हैं हलचन, जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अनुरोध पलशिन।

मन आंसू पोछेगा जो आंखें होगी नम, मेरे दुखों का होगा नमन, आंसू पोछ

जी धन्यवाद पिता। तू पिता परमेश्वर अब केवल काफी है हमारे लिए। हमारे परमेश्वर हमें संसार की जरूरत नहीं, लेकिन प्रभु हमें तेरे रिश्ते की, तेरे करीब आने की जरूरत है प्रभु। हमें तेरी जरूरत है प्रभु। यस प्रभु हम मांगते हैं प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। हमें तेरी जरूरत है, तेरे सिवाय कुछ नहीं प्रभु मेरे लिए पिता परमेश्वर, क्योंकि तू खुदा है। तू कलवारी के पहाड़ पर पिता तूने हमारे हमारे लिए सब कुछ सहा प्रभु। हमारे दर्द को सहा, हमारे पीड़ा को सहा तूने। धन्यवाद तेरे प्रेम को, तेरे प्रेम से तूने हमको बदल दिया पिता परमेश्वर। विश्वास करते हैं यस प्रभु, तूने हमारे लिए सब कुछ सहा, अपने प्रेम से हमें ढांप दिया। हम लोग पापी थे प्रभु, लेकिन तूने कलवरी के पहाड़ पर हमारे लिए तू चढ़ा, हमारे पापों को लिया और हमारे सारे दुखों आंसू तूने पोंछ दिए प्रभु। तेरा धन्यवाद करते, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। ऊरा बरा शिखारा बरा शंदरा बरा, तेरे उस कलवरी के मुकुट के लिए हम धन्यवाद करते। तेरे हमारी वेदना तूने दूर की से धन्यवाद करते। तू बड़े हरम घटे प्रभु, हमारे जीवन में तेरी योजना हो प्रभु, तेरा नाम की महिमा हो प्रभु।

ले, थैंक यू जीसस, इस परमेश्वर तू बड़े, तू हमारा खुदा है प्रभु, और हम बड़े, तू बड़े और हम घटे प्रभु, हमारे जीवन से सिपते तुझे महिमा मिले, तेरे जीवन के लिए प्रभु महिमा मिले, तेरे स्तुति के लिए महिमा हो प्रभु, तेरे राज्य के लिए महिमा हो प्रभु, हम मांगते प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद, तू महान है खुदा प्रभु, तू कलवरी के ऊपर चढ़ा प्रभु, हमारा डिक्लेयर करते तू हमारा खुदा है, तुम्हारा महान खुदा, इसे धन्यवाद करते प्रभु, तू हमारा आत्मिक खुदा है, तूने हमें तू हमें यहाँ तुझ में हम बड़े, और हमारा जीवन से तेरी महिमा हो प्रभु, होने दे प्रभु आज हमारे ऊपर तेरा आत्मा का बाप्तिस्म होने दे प्रभु, पानी पाए प्रभु, हम हर एक के जीवन में तो भर दे प्रभु, हर एक को भर दे प्रभु, भर दे राजा, थैंक यू जीसस, हम घटे तू बड़े प्रभु, तेरी महिमा युगानुग होती रहे प्रभु, हमारा राज्य में तेरी महिमा हो, सूती में तेरी महिमा हो, प्रार्थना में तेरी महिमा हो, यस प्रभु, हमारा जीवन से सिर्फ तुझे महिमा मिले प्रभु, यस धन्यवाद धन्यवाद, ओरा बारा शिखारा बारा शिखेरे बेरे, ओ ना ओरा बारा शिखारा बारा शिखेरे बेरे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, यस प्रभु, हमारे जीवन से तुझे महिमा मिले, हमारे घरों में तेरी उपस्थिति आने पाए, हमारे जीवन से हमारे विचारों से सिर्फ तुझे महिमा मिले प्रभु, यस प्रभु, हमें तैयार कर इस समय प्रभु, हमारे मनों को तैयार कर, तू हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है प्रभु, यस प्रभु, धन्यवाद करते धन्यवाद, तू टूटे मनों वालों के साथ करीब आता है प्रभु, यस प्रभु, तेरे नाम से महिमा करते हम, यस प्रभु, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, हम हर बात के लिए धन्यवाद करते हैं, हमारा जीवन को तो बदलने जा रहा है धन्यवाद, हमारे परिवार में तो बदलने जा रहे हैं, हमारे कलीसियाओं में बदलने जा रहे हैं, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, यस प्रभु, क्या हो सकता है, क्या दे सकता है, कहता तुझे बस शुक्रिया शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, प्यार किया है तूने, प्यार किया है तूने, मेरे परिवार से प्यार तूने किया, मेरी कलीसियाओं से तूने प्यार किया, मेरे सेवक से तूने कार किया,

दिया, प्यार किया है तूने मुझसे, प्यार किया, प्यार किया हो प्यार किया, इतना तूने प्यार किया, छुटका

धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते, तेरी महिमा करते, तेरी आराधना करते प्रभु, कि तू योग्य है प्रभु, तू सामर्थ्यशाली परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, तू स्तुति के योग्य परमेश्वर। तो आज तक तूने हमें संभाला, हमारे जीवन में तूने योग्य में सब दिया, हमारे जीवन से तेरी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। राजा ही तो आए हैं, खुशियां मनाओ खुशियां मनाओ,

चिंता छोड़ो स्तुति करो, चिंता छोड़ो स्तुति करो, राजा यीशु आए हैं, हम सब मिलकर ताली बजाएंगे, राजा यीशु आए हैं।

करुणा अव्वल है, काफी है, कामिल है, पास तेरे रहता है वो दिल में आएगा, पास तेरे रहता है वो दिल में आएगा। तुम मांगो सुनेगा,

पहुंचेगा हाथों को थामेगा, दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा। निर्भय

यस प्रभु, हमारी चिंता को तूने छोड़ के हमें स्तुति करने के लिए कहा प्रभु तूने। तू महान है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। यस प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यस प्रभु, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते प्रभु, तेरी महिमा करते प्रभु, तेरी स्तुति करते, धन्यवाद करते, तेरा तेरे नाम को ऊंचा करते, धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस।

धन्यवाद प्रभु, तेरी करुणा हमारे पर बरस नहीं दी। धन्यवाद प्रभु, इस रात के समय के लिए तेरा धन्यवाद करते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, क्योंकि तू महान है, तू सुंदर है। यस, तू बड़े और हम घटे प्रभु, तेरी महिमा युगानुग होती रहे हमारे जीवनों से, हमारे परिवार से, हमारे कलीसियाओं से। हमें तो और मजबूत कर, तेरे राज्य में मजबूत कर, स्तुति में मजबूत कर, प्रार्थनाओं में मजबूत कर प्रभु। हमारे हर एक परिस्थिति तेरे हाथ में देते प्रभु, तूने हमें बचाया, हमारे जीवन में तो कार्य कर रहा है। हमारे बीते दिनों में जो भी गड़बड़ी आई थी प्रभु, उसको तूने हटा दिया। धन्यवाद करते, बीमार चंगे हो गए, धन्यवाद करते। हमारे देशों में शांति फैला दी से धन्यवाद करते। पुरानी हर बातें निकाल कर तूने हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, हमारे कलीसियाओं में, हमारे बहनों के बीच में, हर एक के जीवन में तो प्रभु अद्भुत काम करने जा रहा है। धन्यवाद, नया करने जा रहा है, पुराना सर हटाकर तू उसमें में सोना चांदी को भट्टी में डालकर तू जिसे उसे पक्का बनाए जाते हैं, वैसे तू आज हमें मरोड़ कर फिर से नया बना रहा है प्रभु। इसे हम तेरा धन्यवाद करते, हम प्रार्थना करते प्रभु इस वक्त प्रभु, हमारे हर एक बहन भाइयों के लिए प्रार्थना करते, उनके जीवन में तू कार्य कर। जो पीछे मुड़े उन्हें तू फिर से नया बनाने जा रहे, जो तेरे से रूठ गए थे प्रभु उनको फिर से तू तेरे करीब लेकर आ रहे, तेरे साथ रिश्ता जिसका टूटा हुआ था उसको फिर से तू जोड़ने जा रहे प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु, मदद कर। तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद, तेरी दया के लिए धन्यवाद, आज तक तूने हमें संभाला धन्यवाद। हमारे देशों में तो शांति फैल रहा है धन्यवाद, हर पुरानी बातें हटा कर तू नई बातें उत्पन्न करने जा रहे। धन्यवाद, हम रिसीव करते प्रभु, हमारे भाई बहनों के बीच में चंगाई आने जा रही है धन्यवाद, कोड़ी शुद्ध की जा रही है धन्यवाद, कैंसर पूरी तरह से यीशु के नाम से निकल जा रहा है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। यस प्रभु, तूने हमें बदला प्रभु, हमें नाम देकर तूने बुलाया। यस प्रभु, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हमारे सभी एसपी इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑफ मिनिस्ट्री में सभी भाई बहनों को ताबा तेरे हाथ में देते, हम सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करते प्रभु। हमारे हर परिस्थिति को तेरे सामने रखते प्रभु, हमारे हर परेशानी को तेरे सामने रखते, हमारे सारे गुनाहों को तेरे सामने रखते प्रभु, क्योंकि तूने धोकर हमें शुद्ध किया, हमारे ऊपर तेरी मोहर लगा दी गई, बुराई को हटाकर तूने भलाई उत्पन्न की, पापों को हटाकर तूने हमारे ऊपर अच्छाई प्रकट की। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। तू महान है धन्यवाद, तू करुणा निदान है धन्यवाद, तू राजाओं का राजा है धन्यवाद प्रभु, तू प्रभुओं का प्रभु है धन्यवाद। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो, तेरा नाम ऊंचा उठाते प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद राजा, सहायता कर, मदद कर प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। यस प्रभु, आज हमें हर बातों से शुद्धता देना चाहता है। यस गॉड वांट टू गिविंग द गुड क्लोथ्स ही वांट टू गिव अस। आइए हम अपने मनों को तैयार करें, समय वचन की तरफ जाते हम प्रार्थना करते, प्रभु मदद कर। हर बंधन को तूने तोड़ दे, हर बुराई को हटा कर फिर से प्रभु हमें तू नया बनाना चाहता है। फिर से ओ श्री, उसका नाम भी लिखा नहीं गया था, 12 साल की श्री, जिस उसका नाम तो उसकी उसको जो हुआ था उसकी उस हिसाब से उसकी उसको जाना जाता था, उसका कोई नाम जिक्र नहीं गया था, लेकिन परमेश्वर ने हमें हर एक को अपना नाम देकर बुलाया।

हमारे सारे हिस्ट्री उसने लिखी, पुरानी हिस्ट्री खत्म करके नई हिस्ट्री हमारे लिए लिखी गई। और आज हम देखते, हम पढ़ेंगे रिवलेशन चैप्टर, प्रकाशित वाक्य का 3:11 पढ़ेंगे। जैसे उस स्त्री का जीवन बदला, उसके कपड़े फटे हुए थे, उसको कपड़े के वो लायक ही नहीं थी, उसको प्रभु ने साफ सुथरे कपड़े दिए, पहना दिए उसको। आज तुम्हें और हमें भी प्रभु धोकर शुद्ध कर फिर से नए कपड़े पहनाना चाहता है प्रभु। आइए अपने मनों को तैयार करें, प्रार्थना पूर्वक बैठे और वचन को समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद प्रभु इस सुंदर वचन के लिए, हमसे बातें कर प्रभु, हमें तैयार कर। हे तेरा वचन हमारे जीवन से पूरी तरह से उतर नहीं पाए प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम पढ़ेंगे रिवलेशन चैप्टर 3:11। अपोकैलिप्स 3:11। हालेलुया। इनो 11 का वचन। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहो, कोई तेरा मुकुट छीन न ले। देखो यह पहली बात प्रभु क्या बोलता रहे हमें, होल्ड फास्ट एंड यू हैव दैट नो वन मे टेक इन योर क्राउन। जो प्रभु ने हमें पहना है कोई हमसे छीन नहीं सकता है। जो जो प्रभु ने हमारे लिए रखा गया है कोई किसी की ऊपर भी छीनने की ताकत नहीं है। लेकिन यहां देखो जॉन हमें समझा रहा है, जॉन को परमेश्वर स्वर्ग में जाकर सारी बातें दिखा रहा है, समझा रहा है। वैसे ही जॉन हमारी हमें लिए समझाने की कोशिश कर रहा है। 3:11 पढ़ते तो उसमें क्या बोल रहा है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहो कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। आज प्रभु हमें कह रहा है जॉन के दर्द कि जो प्रभु ने हमें दिया गया है उसको हमको क्या करना है, पकड़ के रखना है। इधर साफ लिखा है क्योंकि प्रभु शीघ्र बहुत ही जल्दी आने वाला है। और जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, जो प्रभु ने हमें दिया गया है, जो उसने करने के लिए हमें कहा गया है उसको हमें क्या करना है, थामे रहना है। वी हैव टू होल्ड व्हाट एवर गॉड गेव अस, वी हैव टू होल्ड। इंग्लिश में बहुत ही अच्छी बात लिखी है, होल्ड फास्ट व्हाट यू हैव दैट नो वन मे टेक योर क्राउन। प्रभु ने होल्ड करने के लिए कहा है हमें, व्हाट एवर यू गेट दैट इज होल्ड, नो बडी कैन टेक इट योर क्राउन। बी गेट रेडी टू गिव, अवर लॉर्ड इज सून कमिंग। ये बोलो परमेश्वर जल्दी, शीघ्र बहुत ही जल्दी प्रभु आने वाला है। गॉड इज सून कमिंग, दैट्स व्हाई जॉन टी टेलिंग अस ईच ऑफ देम टुडे कि बी होल्ड व्हाट गॉड गेव यू, होल्ड दैट दैट नो वन कैन टेक योर क्राउन। और एक वचन पढ़ेंगे मृत्यु का 9वां अध्याय, उसमें 21 वचन पढ़ेंगे। मृत्यु शापित 9, उसमें से 21 पढ़ेंगे।
मैट्रिक चैप्टर 9वां अध्याय, 9 मैट्रिक 9, उसमें से पढ़ेंगे 21 वर्स। देखो, क्योंकि वह अपने मन से कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। देखो, यहाँ एक स्त्री है, वो कई सालों साल बीमार थी। कितना साल उस अवस्था में उसने क्या नहीं किया होगा, ऐसी बीमार स्त्री थी। और उसने मन में क्या देखा कि मैं प्रभु यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं क्या करूंगी, चंगी हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। इतना विश्वास उसका था। आज प्रभु तुम्हें और हमें यही कहना चाहता है, तुम मुझ पर विश्वास करो। जो स्त्री का विश्वास इतना बढ़ गया कि उसको छूकर वो चंगी होना चाहती थी, इतना विश्वास उसने अपने मन में तैयार कर रखा था। और आज प्रभु तुम्हें और हमें भी यही सिखा रहा है कि हमारा भी विश्वास ऐसा ही तैयार हो जाए। वो तैयार करके आई थी, इसीलिए एक जगह ऐसा भी लिखा है लुक में कि उसने कई लोगों को पूछा भी यीशु के बारे में, ऐसा भी जिक्र करा गया है उसके बारे में, लेकिन उस स्त्री का नाम नहीं लिखा गया इधर कहीं भी। कौन थी, किस घराने की थी, वो यीशु से क्या चाहती थी, ये भी कहीं उसकी कोई हिस्ट्री नहीं। लेकिन उसका ये चीज, वो बीमार थी, उसका जिक्र वही किया है। एक स्त्री थी, वो बीमार थी, उसके अलावा कोई, लेकिन परमेश्वर ने हमें हमें प्रत्येक का नाम उस लिखा, उस स्त्री को भी बुलाया, उसको नाम लेकर उसको, इसीलिए बोले स्त्री कहाँ गया उसको,

यस अमीन। यीशु ने फिर कर उसको देख ले, पुत्री ढाढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। देखो पहला तो उसका नाम लिखा नहीं गया, लेकिन प्रभु यीशु उसको एक पुत्री करके पुकारता है। क्या कहता है? पुत्री करके पुकारता है और बोलते, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज परमेश्वर ने हमें बेटे बेटियां होकर बुलाया है, हर एक का नाम लेकर हमें बुलाया गया है। हमें यूं ही नहीं बुलाया है, हमें परमेश्वर ने उसके अधिकार के वारिस बनाया, उसकी संतान बनाकर रखा है। आज तुम्हें प्रभु वही विश्वास जागृत करने की जरूरत है। उसमें ही हम पढ़ेंगे 8:2-3, मत्तयू का 8:2-3। देखो इधर दूसरा वचन क्या है? देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। अभी इधर एक कोढ़ी भी आया है, क्या करने? खुद को शुद्धता शुद्ध करने। किसके पास? प्रभु यीशु के पास शुद्ध करने आए है। आई एम वेटिंग टू बी क्लींस, बट फेथ हैज अ मस्टर्ड सीड। इफ यू हैव फेथ इन मस्टर्ड सीड तो यू विल बी गेट हीलिंग दैट। अभी देखो यहां परमेश्वर क्या बोल रहा है। इधर एक कोढ़ी उसके पास आकर प्रणाम किया और कहे, प्रभु यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। अभी इधर कोढ़ी भी आया है और वो भी शुद्ध होना चाहता था और प्रभु ने उसको शुद्ध भी किया है। कि प्रभु उसको बोलता है, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। आज प्रभु हमें, तुम्हें और हमें प्रभु शुद्ध करना चाहता है। हमारे विचारों से, सिर्फ बीमारी से चंगा नहीं, वो आत्मा में भी हमें चंगा करना चाहता है। आज हम सभी आत्मा में क्या है? बीमार पड़े हैं, बीमारी की अवस्था में पड़े हैं, परेशानी की अवस्था में पड़े हैं, और प्रभु आज हमें और आपको शुद्ध करना चाहता है। इसीलिए वो कह रहा है कि तुम्हारे विश्वास को तैयार करके रखो, क्योंकि ये जब तुम्हारा विश्वास तैयार नहीं है उधर कार्य नहीं होगा। इसलिए अपने विश्वास को तैयार करके रखना है ताकि अद्भुत कार्य हमारे और आपके जीवन में होना चाहिए, होने वाला है। लेकिन हमारा विश्वास कम होने के कारण आज हम वो आशीष दे नहीं पा रहे और विश्वास हमारे जीवन में काम नहीं कर रहे। आज हम यही बातों के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा और हमें उस विश्वास को पूरी तरह से तैयार कर, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। वो अंधा व्यक्ति आया, वो शुद्ध करने के आया, वो 12 सिर की स्त्री अपने विश्वास को तैयार करके आई कि मैं आज यीशु को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो कोढ़ी भी यीशु से आया, इतना तैयार होकर आया कि प्रभु तू चाहे तो तू मुझे आज चंगा कर सकता है। ऐसा विश्वास आपके और मेरे अंदर होना चाहिए, ऐसा आज का प्रभु का वचन कहता है। अपने मनों को तैयार करिए और इस विश्वास को पूरी तरह से अपने अंदर उतार कर तैयार कराइए, क्योंकि प्रभु जो कभी नहीं हुआ वो आज करने के लिए तैयार है। वो छूना चाहता है, वो स्त्री ने छुआ, वो कोढ़ी ने विश्वास को लेकर आया ताकि वो चंगा लेने के लिए आया, प्रभु पूरी तरह से चंगा होने के लिए, शुद्धता पाने के लिए प्रभु के पास आया। और प्रभु आज तुम्हें और हमें भी यही कहना चाहता है कि वो हमें शुद्ध करना चाहता है, वो अशुद्ध में हमें बिल्कुल रखना नहीं चाहता है। आइए आंखें बंद करें। धन्यवाद प्रभु, आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते। यस प्रभु, तू हमें शुद्धता दे, हमारे विचारों को हटा दे, हमारे स्वभाव को हटा दे, हमारे परिस्थिति को हटा दे,
हमने सबको तेरे चरणों पे रखा। ओ कोढ़ी व्यक्ति आया शुद्धता करने के लिए प्रभु, प्रभु तू चाहे तो तू आज हमें इस हालत से बाहर निकाल सकता है, तू चाहे तो मैं शुद्ध कर सकता है। ऐसा ही आज हम प्रार्थना करते, हमारे जीवन को तो बदल, हमारे परिस्थिति की बदल, और हम ज्यादा समय तेरे लोगों के बीच में, तेरी सेवकाई में, प्रार्थना में, मनन करने में हमारी मदद करो प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करते, तू सहायता कर, मदद कर, तेरे अनुग्रह में, तेरे छत्र छाया में बांध के रख हमारे कलीसियाओं को, हमारे परिवारों को, हमारे देश को। जितने लोग पीड़ा में पड़े उन्हें आजाद कर दे, तकलीफ में पड़े उन्हें आजाद कर दे, बीमारी में पड़े उन्हें आजाद कर दे प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर मंजुमा।